उसने सात आसमान ऊपर तले बनाए। ऐ देखने वाले, क्या तू खुदाए रहमान की आफरिनिश में कुछ नक्स देखता है? जरा आंख उठाकर देख, भला तुझको आसमान में कोई शिगाफ नजर आता है?

क्या उन्होंने अपने सरों पर उड़ते जानवरों को नहीं देखा जो परों को फैलाए रहते हैं और उनको सुकेड़ भी लेते हैं? खुदा के सिवा उन्हें कोई थाम नहीं सकता, बेशक वो हर चीज को देख रहा है।

0: सो वो अभी सो ही रहे थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रातों रात उस पर एक आफत फिर गई।
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
0: तो वो ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती।
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ
0: जब सुबह हुई तो वो लोग एक दूसरे को पुकारने लगे।
1: أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ
0: कि अगर तुमको काटना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही जा पहुंचो।
1: فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ
0: तो वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे
1: अल्लाह يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ
0: कि आज यहां तुम्हारे पास कोई फकीर ना आने पाए।
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: और कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुंचे गोया खेती पर कादिर हैं।
1: फलम

0: उस दिन ये कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़ेंगे जैसे शिकारी शिकार के जाल की तरफ दौड़ते हैं।
1: خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ
0: उनकी आंखें झुक रही होंगी और जिल्लत उन पर छा रही होगी, यही वो दिन है जिसका उनसे वादा किया जाता था।
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: इन

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए।
1: अलैका या सैयदी,
0: यूसीपी की दुनिया के साथ। तो सुनते रहिए
1: सैयद अल अवलीन वल आखिरीन।
0: FM 92.6.

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6। रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस

0: Broadcasting from University Studios.
1: Where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCB की दुनिया। हमारे साथ हैं सर राशिद हुसैन और सर हमजा अमीन। हम चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे। अब उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए मेरे पास एक दो सवाल हैं जो मैं अपने मेहमानों से पूछूंगी। सो सर राशिद हुसैन एंड सर हमजा अमीन, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच लैंग्वेज इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ यंग प्रोफेशनल टू लर्न?
4: Well, in my opinion, both languages are important, but based on the data or generally what we observe, English is a more widespread language. So I think it is fundamentally required that a student must learn English language, not only learn, rather he or she must be very proficient in that. However, considering the importance of Chinese, that is also significant because the future is with China, considering its boom in economy.
3: मेरा सवाल सर हमजा अमीन से बिल्कुल सेम है कि आपको क्या लगता है और आप अपना इसके बारे में क्या ओपिनियन देंगे?
5: ओके, मैं सर राशिद की ही बात से इसको शुरू करूंगा। जैसे उन्होंने पहले बताया कि इंग्लिश इज अ वाइड स्प्रेड लैंग्वेज, हम इंग्लिश की हकीकत को तो नहीं जुटला सकते, बट इन रिसेंट डेवलपमेंट्स हमने देखा है कि यूरोप और अमेरिका स्पेसिफिकली एंड इंग्लैंड, पाकिस्तानीज आर नॉट गेटिंग इनफ वीजास इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप्स, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इवन। बट वी हैव सीन अ शिफ्ट के आप चाइना, क्योंकि हमारे चाइना के साथ बरादराना ताल्लुकात भी हैं, चाइना एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इकॉनमी भी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया की हर दसवीं चीज जो है वो चाइनीज है। जब एक मुल्क आपको इतनी सारी प्रोडक्शन दे रहा है, उसकी इकॉनमी स्ट्रांग है, वो पूरी दुनिया की इकॉनमी का पांचवा हिस्सा एक ही मुल्क दे रहा है, तो हमें इंग्लिश के साथ साथ अभी ये देखना होगा कि हमारे पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं। तो बींग पाकिस्तानी, इस टाइम पे हमारे पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज चाइना की ही हैं। हमें वीज़ा प्रोसेसिंग आसानी से मिल जाती है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ग्रोइंग इकॉनमी है, वो ग्रोइंग इकॉनमी टेक्नोलॉजी की सेंस में है, इंडस्ट्री की सेंस में है, मेडिसिन की सेंस में है, एंड मैनी मोर थिंग्स। और हम उन्हीं के ही सबसे बड़े इम्पोर्टर भी हैं इट्सेल्फ। तो मेरे ख्याल में क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज को बचपन से ही लेके चलते आ रहे हैं बींग अ कोलोनाइज नेशन, लेकिन अब हमें अपना रुझान इंग्लिश से बहुत ज्यादा कम करके चाइनीज की तरफ करना पड़ेगा।
3: टू स्पाइस अप द थिंग्स अ लिटिल बिट मोर, आई एम गोना आस्क सम बोल्ड क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ ऑफ यू। सो फॉर सर राशिद हुसैन, द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस, मूवीज, म्यूजिक, लिटरेचर, व्हिच लैंग्वेज इज विनिंग द सॉफ्ट पावर गेम?
4: वेल, आई थिंक इंग्लिश, बिकॉज इट हैज रिलेटिवली लॉन्गर हिस्ट्री। दुनिया की कोई भी अच्छी किताब अगर आप पढ़ना चाहें तो वो अंग्रेज़ी में होगी, या दुनिया की कोई भी अच्छी किताब जो दूसरी किसी भी ज़बान में लिखी जाए, राइटर या पब्लिशर हमेशा चाहता है कि वो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट हो, क्योंकि अंग्रेज़ी में कारेन यानी कि पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और उनकी जो व्यूअरशिप है वो भी हमें अंग्रेज़ी में नज़र आती है, जैसा कि प्राइम बाय अमेज़ॉन या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह। इवन यूट्यूब पर भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट वॉल्यूम वाइज वो अंग्रेज़ी में नज़र आता है। तो इस तरह से एक जो नैरेटिव कंस्ट्रक्शन है, या जिसको डिस्कोर्स में हम ये कहते हैं कि रियलिटी कंस्ट्रक्ट की जा रही है, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस हमें अंग्रेज़ी का नज़र आता है। इवन वो ममालिक जहाँ पर अंग्रेज़ी ज़बान सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो भी मजबूरी की वजह से, वहाँ पर भी एड्स पर, पैनाफ्लेक्सेस पर, साइन बोर्ड्स पर हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान में या फिर इवन अंग्रेज़ी लेटर्स को यूज़ करते हुए रोमन लैंग्वेज में जुमले लिखे जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इवन जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं या दानिश्वर हैं, फिलोसफर्स हैं, जिनका असर पूरी दुनिया पर है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में हो, सोशल साइंसेस के दूसरी फील्ड्स हो, हमें नज़र आता है कि बहुत बड़े लोग अब भी वो हैं, या वो लोग जो लाइमलाइट में हैं, उनका ताल्लुक उन ममालिक से है जहाँ पर अंग्रेज़ी बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है।
3: थैंक यू सर राशिद फॉर शेयरिंग योर ओपिनियन। But now I will like to ask Sir Hamza to share his opinion, and for him I have a question, which is, which language is more difficult for foreigners to learn, and does that affect the global spread? And we have heard a myth that Chinese language is very difficult to learn. Do you believe in this?
5: again, I would second Sir Rashid's opinion that as he mentioned that English language has worked a lot on the widespread of English language because it is the language of dictionary, it is the language of like syntax, it is the language of books, and there are a huge number of books around the world being translated from other languages into English. And one reason for that, if we see China, like hum agar dekhte hain, to China is a Far East country. And it is totally separated from the Western world. One thing. Another thing, when we learn a new language, we start it from the very basic units. And if we see English has only 26 basic units, and according to the data I have, Chinese has 6,000 expressions. So technically, it is difficult to learn Chinese. It's a fact. We cannot ignore or we cannot deny from this fact. तो जैसा कि इंग्लिश ने अपने ऊपर काम किया उन्होंने उसको आसान किया और लिंग्विस्टिक की टर्म में हम एक चीज़ बोलते हैं बोरोइंग किसी दूसरी जुबान के अल्फाज अपने अंदर जम कर लेना या जज़ब कर लेना जो कि सलाहियत अंग्रेजी में दुनिया में सारी जुबानों से ज़्यादा है लेकिन चाइनीज़ में ये वाली सलाहियत नहीं है तो चाइना को इस पे काम करना पड़ेगा लेकिन हमारे लिए फ़ायदा या सूदमंद यही है कि हम फिलहाल अंग्रेज़ी में तो थोड़े से माहिर हैं ही तो साथ में चाइनीज़ को सीखने की कोशिश करें
3: बहुत शुक्रिया सर राशिद हुसैन और सर हमजा अमीन का अपने ख्यालात को बताने के लिए और हमारे लिसनर्स का भी बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCB की दुनिया अब वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का थोड़ी देर के बाद हम वापस आएंगे हमारे साथ रहिए आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCB की दुनिया

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया और हमारे साथ हैं सर राशिद हुसैन, सर हमजा अमीन। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मैं एक जनरलाइज सा क्वेश्चन करूंगी। अगर आपको अपनी ज़ुबान के बारे में एक सेंटेंस बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे? पहले हम सर हमजा से पूछ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे।
2: आई वुड से इज़ द लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर। आई वॉन्ट से इज़ द कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज, बट इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर।
1: ओके, एंड फॉर सर राशिद हुसैन, व्हाट डू यू हैव टू से?
3: इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ टूल करंटली for companies, for countries, for academia, because it is being used for not only for exploitation, for so many positive things as well. So I think the thing which is very dominant cannot be inevitable.
1: अच्छा, अभी हम बात एक डिस्कस कर रहे थे कि आपको क्या लगता है अकेडमिया में फिलहाल किस लैंग्वेज का ज़्यादा रोल है और वो किस तरह से प्ले किया जा रहा है? आप दोनों थोड़ा सा अपने बारे में ओपिनियंस बताएं।
2: एकेडेमिया में पिछले एक सेंचुरी या मोर देन अ सेंचुरी अगर हम देखें तो दो वजह से इंग्लिश लैंग्वेज ही डोमिनेंट है। बिकॉज एक तो कॉलोनाइजेशन की वजह से, तो जो कॉलोनाइजर्स थे वो कॉलोनाइज्ड को स्कॉलरशिप्स दे के या अपने यहाँ जॉब्स दे के तो अपना एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करते थे। दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर एज वेल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन चूंकि अभी वो रोल जो है वो कदरे कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इमर्जेंस। लैंग्वेज का अपना तो एक रोल है ही, लेकिन सोशल मीडिया पे जो अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है या अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसकी वजह से एक कॉमन लेमैन को भी ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि हमारा सिर्फ लैंग्वेज सीखना ही मकसद नहीं था या एक ही लैंग्वेज जो है वही कोई डिवाइन लैंग्वेज नहीं है। अभी हमारा जो टिल्ट है वो किसी भी तरफ हो सकता है, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि हमें किस तरफ से बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं। तो वो कुछ चीज़ें मुश्किल तो रहेंगी हमारे लिए थोड़ा, हमारे जैसी पॉलिटिकली इनस्टेबल इकोनॉमीज़ की वजह से, बट हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दोनों तरफ से मिलेंगे क्योंकि हम इसी तरह से ही चल रहे हैं।
3: मुझे ये लगता है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान जितनी वाइड स्प्रेड है उसकी इम्पोर्टेंस इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि हम टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं और हमारी ज़िंदगियों को एल्गोरिदम ड्राइव कर रहा है और उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक अंग्रेज़ी ज़ुबान के साथ। इवन वो बच्चे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इनरोल्ड हैं या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, जब वो प्रोग्रामिंग या स्पेसिफिकली कोडिंग सीखते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान पर महारत रखते हों या कम अज़ कम उसकी बेसिक्स जानते हों। तो इसको अगर हम पॉलिटिकली लिंक करें चीज़ों को, तो वो ये बनता है कि सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनते हैं। इवन पॉलिटिकल कैंपेन्स, इलेक्शन कैंपेन्स सोशल मीडिया पर रन की जाती हैं और वहाँ पर जो नैरेटिव बनता है वो लोगों को ड्राइव करता है या एक राय कायम करने पर मजबूर करता है। तो सारी दुनिया एक तरफ एक कंटेंट यूज़ कर रही है जो कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में है और वो मुमालिक उसको ड्राइव कर रहे हैं जो कि अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने वाले हैं और समहाउ एक ग्लोबल इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर भी कंसिडर किए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिर्फ इस एक पहलू में चाइना ज़रा सा पीछे नज़र आता है, क्योंकि चाइना का अपना सिस्टम है, सर्च इंजन अपना है, सोशल मीडिया अपना है, उसके ज़रिए से वो अपनी अवाम का नैरेटिव या उनकी ओपिनियन तो शेप अप कर पाते हैं, मगर दुनिया पर उसका क्या असर है वो इस हवाले से अभी इस रेस में थोड़ा सा पीछे हैं। मगर वो इसको कंपनसेट करने के लिए इकॉनमी के हवाले से मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे हैं और एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पर सामने आए हैं।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आप दोनों के ओपिनियन से इत्तेफाक करती हूँ। आपको भी पता है कि दुनिया के अंदर तीन चीज़ें जिन पे ज़्यादा मेन फोकस होता है और इनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे होता है, एक टेक्नोलॉजी, एक एकेडमिया और एक इकॉनमी। एकेडमिया के पॉइंट पे तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात

0: करें, आपको क्या लगता है कि दोनों जबानों का टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किरदार है?
1: जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, लैंग्वेज का एकेडेमिया में रोल किस तरह से है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। वो आप मोबाइल फ़ोन की सेंस में ले लें, लैपटॉप्स की सेंस में ले लें, आप एयर कंडीशनर की सेंस में ले लें। आपने पिछले ही दिनों सुना होगा कि BYD सरपासेस टेस्ला। तो चाइना एक बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है इन सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इस शिफ्ट को भी देखें तो लैंग्वेज में तो चाइना ने खुद को बहुत देर पीछे रखा, लेकिन अभी AI और ChatGPT और इन चीज़ों की इमर्जेंस की वजह से चीज़ें कदरे आसान हो गई हैं। ट्रांसलेशन आसान हो गई है, तो उनको अब कम्युनिकेट करना आसान हो गया है दूसरी दुनिया के साथ। उसके बाद चूंकि चाइना दुनिया का 5वां हिस्सा आबादी भी है, एक ही मुल्क, तो सारे एशिया की प्रोडक्शन आप iPhones की देख लें, आप HP की देख लें, आप डेल के लैपटॉप्स की देख लें, तो एशिया की सारी प्रोडक्शन वो कंपनियां भी आके चाइना में ही करती हैं और फिर चाइना से इस पूरे रीजन में डिलीवर करती हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से तो वो एक मुल्क इटसेल्फ एक जायंट है। सो उसके कुछ नुकसान भी हैं हमारे जैसे छोटे मुल्कों को ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में, बट वो टेक जायंट हैं तो वो उस पर डोमिनेट कर रहे हैं अगले आने वाले कुछ सालों में मजीद।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और हम थर्ड फैक्टर पे भी बात कर लेते हैं जो कि इकोनॉमिक फैक्टर है। आपको क्या लगता है चाइना और चाइना की ज़बान और इंग्लिश ज़बान, इन दोनों का क्या इकोनॉमिक लेवल पे इफ़ेक्ट है?
1: इसी को अगर हम लेके चलें तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने UNO, IMF और वर्ल्ड बैंक बनाए ताकि वो डिफरेंट छोटे ममालिक को एड दे सकें या उन पे अपनी डोमिनेंस बरकरार रख सकें। लेकिन अगर आप करंट डेटा के मुताबिक देखें तो अमेरिका इटसेल्फ चाइना का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क है। और उसके बाद हम पाकिस्तानी CPAC के थ्रू आ जाएं या आप डिफरेंट और प्रोग्राम्स के थ्रू आ जाएं, हम चाइना से बहुत सारे पैसे कर्जों, एड्स या डिफरेंट मेमोरेंडम्स के थ्रू पैसे ले रहे हैं ताकि हम उनके साथ बने रहें। तो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में इस टाइम पे अगर आप देखें तो चाइना का, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, 17.6% आई थिंक GDP टोटल वर्ल्ड GDP का शेयर है। तो हम उनकी इस इम्पोर्टेंस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक रीसेंट डेवलपमेंट में जिसमें कि दुनिया ने देखा कि पहले बोइंग की डोमिनेंस थी जो कि एक अमेरिकन कंपनी है एयर एविएशन में, तो वो डोमिनेंस चाइना ने पिछले साल में ख़त्म कर दी है। चाइना का अपना एक तैयारा C919 ऑपरेशनल हो गया, उस वजह से बोइंग को अपने तैयारे वापस लेने पड़ रहे हैं। और उसमें एक वजह तो टैरिफ्स भी हैं जो इम्पोज किए गए, और दूसरी वजह यह है कि चाइना चूंकि एक इमरजेंस पावर थी तो वो अपनी ही इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, उनका जो डॉलर आउटफ्लो था वो रोकने के लिए उन्होंने अपनी सारी प्रोडक्शन शुरू कर दी है, वो बेशक गाड़ियों में हो, फोन्स में हो या जहाज़ों में।
0: सर राशिद हुसैन से मैं पूछना चाहूँगी कि उन्होंने टेक्नोलॉजी, एकेडमिया और इकोनॉमी तीनों के बारे में राय सुनी है, अब वो अपनी राय इसके बारे में क्या देना चाहेंगे?
2: इसके बारे में मैं अपनी राय का इजहार इस हवाले से करूँगा कि रिसेंटली नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडल लैंग्वेजेस में एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर हमारी फ्रेटर्निटी के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी राय का इजहार जो किया वही मेरी राय है और मैं उस राय को सेकंड करता हूँ। वो ये है कि AI के इमरजेंस से पहले लैंग्वेज ऑफ एकेडेमिया और इसकी इंपॉर्टेंस और बतौर सब्जेक्ट्स ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में या तालीमी इदारों में पढ़ाई जाती थी, जबकि वो काम अब AI बहुत आसानी से चंद सेकंड्स में करके दे रहे हैं। अब इसके खिलाफ एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि क्या वो एथिकल है या नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि बहुत सारे जर्नल्स ने, पब्लिशर्स ने इस हकीकत को तस्लीम किया है कि AI का यूज़ एक हद तक बिल्कुल ठीक बात है। और अगर हम इसका कंपैरिजन पास्ट के साथ करते हैं तो पहले भी प्रोफेसर के पास रिसर्च असिस्टेंट्स हुआ करते थे, प्रोफेसर सिर्फ उनको डिक्टेट किया करते थे, गाइड किया करते थे, और वो तहरीर असल में रिसर्च असिस्टेंट की तरफ से हुआ करती थी। तो मेरे ख्याल से इस हद तक तो अंग्रेज़ी जो है वो थोड़ी सी, यानी उसकी रिक्वायरमेंट्स या उसको सीखने के हवाले से जो तरद्दुद स्टूडेंट्स की तरफ से था वो थोड़ी तब्दील हुई है। जहाँ तक इकॉनमी की बात है, उस लिहाज से मैं सर हमज़ा की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि चाइना जो है वो एक इमर्जिंग इकॉनमी है और हम ये तवक्को रख सकते हैं कि अगले कुछ सालों में अंग्रेज़ी की इम्पोर्टेंस इस हवाले से कम हो सकती है। आखिरी बात वो ये कि लैंग्वेज जो है टेक्नोलॉजी की अभी भी वो अंग्रेज़ी ही है, तो मुझे लगता है कि अगर अंग्रेज़ी को इस हवाले से ज़रा सा भी इग्नोर किया गया या एविटेबल बनाया गया, उसके इमीडिएट और فار فلنگ ریپرکشنز ہو سکتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے یا کسی بھی ادارے یا ملک کے لیے.
0: بہت شکریہ سر راشد حسین اور سر حمزہ امین اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. آج کا ہمارا ٹاپک تھا امپورٹنس آف چائنیز اینڈ انگلش لینگویج. ہمارے ساتھ تھے سر راشد حسین اور سر حمزہ امین. بہت شکریہ سر راشد حسین اور سر حمزہ امین اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. آج کا ہمارا ٹاپک تھا انگلش اور چائنیز لینگویج کی امپورٹنس کے بارے میں. ہمارے ساتھ ہے سر راشد حسین اور سر حمزہ امین. آگے بھی ہم اسی طرح کے معلوماتی پروگرام لاتے رہیں گے. ابھی ہمیں اجازت دیجیے, سنتے رہیے گا FM 92.6 UCP کی دنیا. اللہ حافظ.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
2: एक नई पहचान एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
3: जब मिलती है लगन
2: मेहनत
3: कामयाबी और खुलूस
2: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6
3: सुनते रहिए

शुरू हो जाता था, ज्यादातर बाहर के महीने में होता था, अगर दिन भी बड़े लंबे होते हैं तो 8 बजे मैच शुरू हो जाता था और शाम 6 बजे तक चलता था, तो आसानी से एक इनिंग हो जाती थी उस मोहल्ले की टीम की, मेजबान टीम की, जिसके ये रुकन थे और जनाब बड़े इंटेग्रल पार्ट थे, ठीक है। उनकी बारी आई, क्योंकि मैंने बताया आपको मुखालिफ टीम चूंकि बहुत अच्छी थी, और उस दिन कप्तान ने पहली दफा डायरेक्टर को सही तौर पर इस्तेमाल भी किया, ये आपको आखिर में बताऊंगा कैसे। जब बैटिंग करने गए हम लोग कह रहा हूँ जो उस मोहल्ले की टीम, चले अभी पता लग ही गया तो समझिएगा मेरा भी उसी मोहल्ले से ताल्लुक था, तभी तो मैं उसका चश्मदीद गवाह था, जैसे निकाह में गवाह होते हैं, तो गवाह ना हो निकाह जो आपको पता है होते ही नहीं है, एक जो अहद होता है वो परवान ही नहीं चढ़ता जब तक गवाह ना हो और पढ़ाने वाला निकाह खान ना हो। तो मुझे आप समझ लीजिए कि मैं भी वहाँ मौजूद था, जैसे इब्राहिम शाह का शेर याद आ गया आपको बताता चलूँ, अदरवाइज बड़ी खुश्क बात हो जाएगी। कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मकसूद था पर्दा तेरा। तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्यों इतनी रवानी से, और फिर बताता चलूं थोड़ी सी अपनी खुद सताइश जो कि गलत होती है करता चलूं, कि मेरे जो सामने बैठे हुए आज के डायरेक्टर भी हमारे, लेकिन मैं डायरेक्टर ही कहूँगा, डायरेक्टर को मैं बड़ा बदनाम कर चुका हूँ आज के मौजू के अतबार से, आज के जो मुझे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, जो मुझे चला भी रहे हैं, उन्हीं के इशारों पे चल रहा हूँ मैं, मुझे बता भी रहे हैं, तो उन्हें मुझे डायरेक्टर नहीं कहूँगा, तो वो देख रहे थे मेरी तरफ, चूँकि अदब के शौकीन हैं, शायक हैं, इसलिए उनकी समात की नज़र किया मैंने आज इब्राहिम शाह का ये जो टुकड़ा था। तो बताना चाहता हूँ हम भी वहीं मौजूद थे, इसलिए मैं हमसे भी सब पूछा कि अब मुझसे आप पूछिएगा, मैं वहाँ मौजूद था, ये तो मैंने बता दिया आपको। दूसरे में से मिसाक हम उसे कब पूछते हैं, जब मुझे आप फीडबैक अपनी भेजेंगे, मुझसे पूछिएगा कि मैं कैसे इस चीज़ को, मैं दिल से बोलता हूँ ठीक है, और फिलबदी बोलता हूँ, और रवानी से तसलसल से बोलने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं बोल पाता भी हूँ कि नहीं, ये तो आप लोगों की फीडबैक ही बताएगी। एनीवे, बहरहाल आखिर में डायरेक्टर साहब की जब बैटिंग आई, आउट होते गए लोग, रनजों का चुके उन्होंने ढेर लगाया, तो अंबार था, हम कर ही नहीं सकते थे। कप्तान ने डायरेक्टर को जाते हुए कहा कि शाम होने में, अंधेरा होने में 15-20 मिनट बाकी हैं, तू जब आउट हो जा, तू जब आउट होता है, और सबको वास्तविक यकीन था कि इन्होंने दूसरे नहीं तो चौथे बॉल पे आउट हो जाना, तूने फड्डा डाल देना है वहाँ, तूने विकेट नहीं छोड़नी, ताकि हमारा आज का मैच ड्रॉ हो जाए, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिले। मैच तो हमारे 9 आउट थे, 10वां तो आउट ही नहीं हुआ, और एक दिन का मैच होता था, या रात पड़ जाए या कोई और वजह हो जाए, मैच खत्म हो जाए, तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलता था, जैसे आजकल बारिश की बुनियाद पर मिलता है। जनाब ये गए, वही करना खुदा का, हुआ वही जिसका डर था और होना ही था, ठीक है जी। डॉक्टर साहब जब आउट हुए तो जनाब जी मैं आउट ही नहीं, और सुनिए बैटिंग क्रीज से कह रहे हैं अंपायर को, ऐसे नो बॉल सी। उन्होंने कहा जी एड्डी दूरों तो नजर, मैं बिल्कुल नजर होंगी मेरे बॉलर के पैर दे उते, एड्डा उन्हें बार क्रीज तो पैर बार कटे, एड्डी होती एड्डी बार सी, तू नो बॉल नहीं दिता, तू नो बॉल नहीं दिता, तू उस दिन भी मैंने गलत आउट देता, मैं मन गया सा मैं लिया लेंदे कैंड थे, आज तू नो बॉल दे उते मैंने आउट देता है। उन्होंने कहा जी बॉलर का कप्तान, उन्होंने कहा जी सानू नहीं पता, पर बंदा बड़ा जहीन है, एदी नजर भी बड़ी तेज है, कहना मैं तेन कही जा रहा, और साथ ही बैट पकड़ा अपनी बैटिंग लाइन बैटिंग वाली साइड छोड़ के, नॉन स्ट्राइकिंग एंड जो होता है, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे अंपायर भी खड़ा होता है, दूसरा बैट्समैन भी खड़ा होता है, उस तरफ चल पड़े, उन सिर खुलाना है जरूर, तू बैट को हवा में उठा लिया। मुखालिफ भी कप्तान आकर ने जी की कर रहे तू परे हो, अंपायर से मेरी गल ले गलत आउट देता, उसने भी देखता मैं चुप कर गया, मेरा प्यू बैठा है, सोचते मेरा प्यू ही नहीं आज बैठा हुआ, मेरा प्यू भी नहीं बैठा हुआ, अज मैंने कौन रोकेगा, ऐवी मैच हराना चाहना पे तू सू। हालांकि बेशुमार रन पड़े थे, हमने हर सूरत मैच हारना ही था, लेकिन नॉकआउट सिस्टम होता था उस जमाने में, जो हार गया उसका सफर वहीं तमाम हो जाता था, तो बड़ी शर्म का मकाम था कि जी महल्ले की टीम मेजबान अच्छी टीम थी, इतनी बुरी टीम भी नहीं थी हमारे महल्ले की, लेकिन मुखालिफ टीम बहुत तगड़ी थी, उससे हमारा अर्ली मैच पड़ गया, हम आगे जाना चाहते थे, लिहाजा जनाब जब इसने देखा जनाब डायरेक्टर साहब ने कि बात परवाह नहीं चढ़ी, उन्होंने जनाब अंपायर वाली साइड की जो विकेटें थी ना उसको उखाड़ा, उसके साथ ही ग्राउंड के अख्ताम पे बदरौ एक नाला बहता था और विकेट उठा के उसमें फेंक थी। जी मेरी मंदा ही नहीं पिया, हमें हरवाना चाहता है, ये मुखालिफ टीम के साथ मिला हुआ है, मैं तो ये मैच नहीं होने दूंगा। तो जनाब ये इस पे अख्ताम हुआ, अभी आगे का किस्सा बहुत आगे हो जाएगा। ये साहब बाद में चले गए बड़े होके साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका

0: ऐसे वापस आए 4 साल के बाद, शायद इन्होंने की नहीं हुई थी, अभी तक हयात हैं, कभी मौका मिला तो उनको मैं जरूर लेके आऊंगा, ताकि आपके इश्तियाक को देखते हुए अगर आपने मुझे वाकई मेरे इस प्रोग्राम को, आज के मौजू को पसंदीदगी बख्शी, तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आखिरी प्रोग्राम में उनको लेके आऊंगा और उनसे आपकी गुफ्तगू करवाऊंगा, उनको सुनवाऊंगा कि मैंने जो मौजू जो दिया है वो गलत तो नहीं दिया, वो इसकी तायद करेंगे। जनाब वहां से वापस आए 4 साल के बाद, पूरा महल्ले के जो लड़के वाले थे बड़े, उनकी एज के भी बड़े भी, वो जनाब गए लेने उनको, तो जनाब मनकों से हारों से अपने आप को भरा हुआ शहर में पहुंचे जनाब, जुलूस की सूरत में तकरीबन, तो जाके उन्होंने कहा जी मैं साउथ अफ्रीका च रहा, जोहानसबर्ग च, उत्थे मैं जो भी कहना सब पूरी हो जाती सी, अल्लाह ताला ने मेरा ना लिहाजा रहे, उत्थे मुसलमान लोग सन, उन्होंने मैंने एक नवा खिताब दिता है जिंदा पीर। तो जनाब डायरेक्टर साहब को उसी महल्ले में आजकल जिंदा पीर के नाम से याद किया जाता है। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वाकई पसंद आया है तो खुदारा ये जो यूसीपी की दुनिया है, 92.6 यूसीपी की जो आवाज़ है, हमारी पहचान है, उस पर खुदारा जब सुनिएगा तो चाहे इस पर मोतरजी आप हो और तनकीद कीजिए, ज़रूर तनकीद कीजिए, ताकि कल कल मैं कोई और प्रोग्राम शुरू कर सकूँ तो मैं बेहतरी का मुजाहरा कर सकूँ, क्योंकि इंसान सब कुछ करता है, जो होता है ज़ाती तनकीद उसको बर्दाश्त नहीं करता, दूसरों में तनकीद करना आसान समझता है, कीड़े निकालना आसान समझता है, जब खुद पे तनकीद हो तो उसको बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन यकीन कीजिए मैंने ये बड़ी मुश्किल से सीखा, और अगर मैं ज़िंदगी का नचोड़ बताऊँ ना तो मैंने यही सीखा कि तनकीद जो होती है असल में वो बराए इस्लाह होती है, आपका कोई ना कोई भला उसमें मुजमिन होता है। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम को जो डायरेक्टर था, बताइएगा कि मैंने आज के मौजू को जब डायरेक्टर नाम दिया तो क्या मैंने वाकई आज के इस मौजू के साथ इंसाफ भी किया। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: सूफी सिंग्स हु दैट व्हिच इज दैट व्हिच वाज दैट व्हिच विल बी।
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسیپی

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
0: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
4: ओनली ऑन वन प्लेस, देन

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Admissions open for fall 2026. Explore the diverse degree programs offered by Faculty of Media and Mass Communication at University of Central Punjab. We are offering BS Media and Communication Studies, BFA Visual Communication Design, BFA Visual Art. Contact us at 080-000-827 or apply on admissions@ucb.edu.pk. Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab.
2: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
3: Musalmani ke donad ramze din ro, nasayat pishe ghair Allah jabin ro. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

नूरजहां ने 1000 फिल्मों के लिए गीत गाए जिनमें से ज्यादातर मकबूले आम हुए। नस सदी से ज्यादा अरसा तक मौसीकी की सल्तनत और करोड़ों सामईन के दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करने वाली मलका तरन्नुम नूरजहां की शख्सियत के हवाले से एशियाई लेजेंड दिलीप कुमार की अहलिया और माजी की मारूफ अदाकारा सायरा बानो का कहना है, मलका तरन्नुम नूरजहां ने प्लेबैक सिंगिंग में जो उसलूब अंदाज वजा किया वो फिल्मी मौसीकी का लाजमी जुज बन गया। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार अक्सर ये बात करते हुए मलका तरन्नुम का तस्करा करते हैं तो कहते हैं कि दुनिया में फिल्म और म्यूजिक रिकॉर्डिंग की इजादात को मुतारिफ हुए अभी थोड़ा अरसा हुआ था, इसलिए इस तकनीक को सीखने के लिए ना तो इंस्टीट्यूशंस से और ना ही फनकारों की ट्रेनिंग का अहतमाम। हैरत अंगेज अमर ये था कि नूरजहां ने इस दौर की जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत हासिल किए बगैर जो काम किया वो आज भी अनोखा और मुनफरिद है।

मेरा माही चैन शरीरा, जिंदा है लाहौर, पाइंदा है लाहौर। ए पुत्र हटा दे नई विगदे, की लब दे फिरी बाजार कुड़े। मलका तरुण ने अपने मिली नगमों से वतन की हिफाजत करती हुई गयूर कौम को पैगाम दिया। सियालकोट तू जिंदा रहेगा, तू जिंदा रहेगा, मेरा सोहना शहर कसूर नी। रब दिया रखा, ये वो गीत थे जिन्होंने पाक अफवाज के हौसलों और जज्बों को बढ़ा दिया।

1986 में जब वो शुमाली अमेरिका के दौरे पर थी तो इन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टर्स ने एंजाइना की तकलीफ बताई, जिसके बाद इनकी सर्जरी की गई। सन 2000 में कराची में इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। यूं ये दिलकश आवाज 23 दिसंबर सन 2000 को अपनी महक यहीं छोड़कर हमसे हमेशा के लिए दूर हो गई।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: admissions open for fall 2026. Explore the diverse degree programs offered by Faculty of Media and Mass Communication at University of Central Punjab. We are offering BS Media and Communication Studies, BFA Visual Communication Design, BFA Visual Art. Contact us at 080-000-827 or apply on admissions at ucp.edu.pk. Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab.
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन,
1: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।
3: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, जिसमें प्रोग्राम का नाम है फैकल्टी आर और मुझे कहते हैं एमन साकिब। हम फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर की तरफ से हाजिर हैं और इस वक्त मेरे पास दो मेहमान मौजूद हैं, सर राशिद हुसैन और सर हमजा अमीन। मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप दोनों अपना थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन करा दें हमें।
4: फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू मिस एमन फॉर कॉलिंग अस एट योर शो। दिस इज हमजा अमीन एंड आई हैव बीन इनटू लैंग्वेज टीचिंग फ्रॉम लास्ट 7 years इन डिफरेंट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स इन लाहौर लाइक कॉमसायर्स, अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड माई करंट स्टेशन एट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
5: Well, my name is Rashid Hussain and currently I'm working as a lecturer in English Language Center, the University of Central Punjab, and I'm also pursuing my PhD in English Linguistics. Prior to working here for last 4 years, I've been working in National University of Modern Languages and Minhaj University.
3: Thank you so much, Sir Rashid Hussain and Sir Hamza Amin, to be here with us today. So today we will be discussing the importance of English and Chinese language. We will be seeing their global influence, language and culture, business and technology. So let's move towards our first questions. Let's start with a broad one. What makes your language globally important today?
5: We just look at this very phenomenon of English being a lingua franca, then I think we got two major dimensions, technology and economy. According to the recent data, English language teaching industry is more than $60 billion industry, and it is going to be doubled after 2030. तो मेरे ख्याल से इसकी इम्पोर्टेंस इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है कि स्टूडेंट्स जब भी मार्केट में जॉब हंट करने के लिए जाते हैं तो एक बुनियादी रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जनरली इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत अच्छी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स बाय 5 मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज, दीज आर टेक कंपनीज, दे हैव हाईलाइटेड दैट दोज हु डू नॉट पोजेस गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एनालिटिकल स्किल्स, दे आर नॉट हायर्ड एंड वी डू नॉट प्रेफर टू हायर देम। तो मेरे ख्याल से इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहिए और मार्केट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको देखना चाहिए।
3: Let's ask Sir Hamza Amin to tell a little more about this.
4: Okay, I would like to second Sir Rashid Hussain. Like, English is a global language. It's a language of economy, language of aviation, language of cultural exchange. But the boom in business and economy, and specifically from the 21st century, China emerged as a Thucydidean trap for American economy or the for Western economy. So, जब हम इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो चाइना एक तरफ तो दुनिया की ऑलमोस्ट पांचवां हिस्सा आबादी है, देन अगर आप ग्लोबल GDP का डेटा देखें तो करंट रिसर्च के मुताबिक, करंट डेटा में चाइना अकेला 19.6% इकॉनमी में शेयर होल्डर है, जो कि ग्लोबल पार्ट है उसका। तो हमें आने वाले वक्त में चाइनीज़ की इम्पोर्टेंस नज़र आ रही है, क्योंकि दुनिया का रुझान वेस्ट से अब चाइनीज की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो एक मुल्क ही दुनिया का पांचवां हिस्सा है इकोनॉमी में भी और आबादी में भी. सो दैट्स हाउ चाइनीज लैंग्वेज लर्निंग इज नाउ इम्पोर्टेंट इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स. एंड वी कैन नॉट लाइक इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बट करेंटली द वर्ड इज शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू चाइनीज वर्ड. सो दैट्स माई ओपिनियन.
3: अब मेरा सवाल सर राशिद हुसैन से होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज बिजनेस वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में और एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत देर से राइज है, और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में इसका किस तरह सलीका ये चले?
5: जी, मेरे ख्याल में जबानों के राइज होने या गालिब होने का ताल्लुक इस बात से होता है कि किस जुबान के बोलने वाले हुकूमत कर रहे हैं किसी भी एरिया पर या दुनिया पर. तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉलोनाइजेशन के बाद ब्रिटेन्स ने तकरीबन दुनिया के ज्यादातर इलाकों पर हुकूमत की, और जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि अंग्रेजी जुबान हमेशा से गालिब रही है जब से अंग्रेजों ने कॉलोनाइज किया. उसके बाद से इम्पॉर्टेंट एक इवेंट ये आता है कि 1990s में इंटरनेट ईजाद होता है, और तब तक अमेरिका भी कॉलोनाइजेशन के बाद अंग्रेजी जुबान से मगलूब हो चुका था. तो इंटरनेट की लैंग्वेज अंग्रेजी होने की वजह से पूरी दुनिया में इसकी अहमियत और बढ़ गई. और डेविड क्रिस्टल, जो कि एक मशहूर सोशियो लिंग्विस्ट हैं और ब्रिटेन से हैं, वो ये कहते हैं कि हम किसी जुबान के बारे में ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सी जुबान कितनी देर तक गालिब रहेगी. तो ये अंदाज़ा लगाना कि अगले 20-30-50 सालों में चाइनीज़ ग्लोबल लैंग्वेज बन जाएगी या अंग्रेजी रहेगी, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि लैंग्वेजेस इवॉल्व होती रहती हैं, लैंग्वेजेस में तब्दीलियां भी आती हैं. जैसा कि साउथ अफ्रीकन अंग्रेजी में हमें करीब 10,000 ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो लैंग्वेजेस को मैयर करना या उस डेटा की बुनियाद पर कोई स्पेकुलेशन करना, ये बहुत मुश्किल काम है.
3: नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर सर हमजा अमीन. China's growing economic power has led to more global interest in Chinese. Are we seeing a language shift from Mandarin in business and diplomacy?
4: For this question, I think, like as Sir Rashid told us about the supremacy of English language, but nowadays we observed a shift, and in previous banned items, there was something like they banned Huawei's items in America, and in response, China banned Google services in China and they developed their own. So currently China is an economy that can face anything, any challenge, and they have developed so much things. And currently, according to the data, China is offering maximum scholarships in technology, in medical sectors, in even they are offering scholarships in English language. So that would be a need for the global economies to learn Mandarin and go for Chinese different options, because the world has no other choices remained for them, because Americans and Western world is now working something differently on some different agendas. But the Chinese government is only working for economy, for sustainability, and that is the goal for them.
3: हम बात कर रहे थे चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के बारे में. हमारे साथ अभी सर राशिद हुसैन और सर हमजा अमीन हैं. अब वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का. हम थोड़ी देर बाद आपके साथ वापस होंगे. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: Broadcasting from River City Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: Lunch 2.6.
3: Welcome back, listeners. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCB की दुनिया. हमारे साथ हैं सर राशिद हुसैन और सर हमजा अमीन. हम चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे. अब उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए मेरे पास एक दो सवाल हैं जो मैं अपने मेहमानों से पूछूंगी. सो सर राशिद हुसैन एंड सर हमजा अमीन, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच लैंग्वेज इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ यंग प्रोफेशनल टू लर्न?
4: Well, in my opinion, both languages are important, but based on the data or generally what we observe, English is a more widespread language. So I think it is fundamentally required that a student must learn English language, not only learn, rather he or she must be very proficient in that. However, considering the importance of Chinese, that is also significant because the future is with China, considering its boom in economy.
3: मेरा सवाल सर हमजा अमीन से बिल्कुल सेम है कि आपको क्या लगता है और आप अपना इसके बारे में क्या ओपिनियन देंगे?
5: ओके, मैं सर राशिद की ही बात से इसको शुरू करूंगा. जैसे उन्होंने पहले बताया कि इंग्लिश इज अ वाइड स्प्रेड लैंग्वेज, हम इंग्लिश की हकीकत को तो नहीं जुटला सकते, बट इन रिसेंट डेवलपमेंट्स हमने देखा है कि यूरोप और अमेरिका स्पेसिफिकली एंड इंग्लैंड, पाकिस्तानीज आर नॉट गेटिंग इनफ वीजास इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप्स, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इवन. बट वी हैव सीन अ शिफ्ट के आप चाइना, क्योंकि हमारे चाइना के साथ ब्रादराना ताल्लुकात भी हैं, चाइना एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इकॉनमी भी है. जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया की हर 10वीं चीज जो है वो चाइनीज है. जब एक मुल्क आपको इतनी सारी प्रोडक्शन दे रहा है, उसकी इकॉनमी स्ट्रांग है, वो पूरी दुनिया की इकॉनमी का 5वां हिस्सा एक ही मुल्क दे रहा है, तो हमें इंग्लिश के साथ साथ अभी ये देखना होगा कि हमारे पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं. तो बींग पाकिस्तानी, इस टाइम पे हमारे पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज चाइना की ही हैं. हमें वीज़ा प्रोसेसिंग आसानी से मिल जाती है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ग्रोइंग इकॉनमी है, वो ग्रोइंग इकॉनमी टेक्नोलॉजी की सेंस में है, इंडस्ट्री की सेंस में है, मेडिसिन की सेंस में है, एंड मैनी मोर थिंग्स. और हम उन्हीं के ही सबसे बड़े इम्पोर्टर भी हैं इट्सेल्फ. तो मेरे ख्याल में क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज को बचपन से ही लेके चलते आ रहे हैं बींग अ कॉलोनाइज्ड नेशन, लेकिन अब हमें अपना रुझान इंग्लिश से बहुत ज्यादा कम करके चाइनीज की तरफ करना पड़ेगा.
3: टू स्पाइस अप द थिंग्स अ लिटिल बिट मोर, आई एम गोना आस्क सम बोल्ड क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ ऑफ यू. सो फॉर सर राशिद हुसैन, द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस, मूवीज, म्यूजिक, लिटरेचर, व्हिच लैंग्वेज इज विनिंग द सॉफ्ट पावर गेम?
4: वेल, आई थिंक इंग्लिश, बिकॉज़ इट हैज रिलेटिवली लॉन्गर हिस्ट्री. दुनिया की कोई भी अच्छी किताब अगर आप पढ़ना चाहें तो वो अंग्रेज़ी में होगी, या दुनिया की कोई भी अच्छी किताब जो दूसरी किसी भी ज़बान में लिखी जाए, राइटर या पब्लिशर हमेशा चाहता है कि वो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट हो, क्योंकि अंग्रेज़ी में कारेन यानी कि पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं. अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और उनकी जो व्यूअरशिप है वो भी हमें अंग्रेज़ी में नज़र आती है, जैसा कि प्राइम बाय अमेज़न या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह. इवन यूट्यूब पर भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट वॉल्यूम वाइज वो अंग्रेज़ी में नज़र आता है. तो इस तरह से एक जो नैरेटिव कंस्ट्रक्शन है, या जिसको डिस्कोर्स में हम ये कहते हैं कि रियलिटी कंस्ट्रक्ट की जा रही है, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस हमें अंग्रेजी का नजर आता है. इवन वो ममालिक जहां पर अंग्रेजी जबान सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो भी मजबूरी की वजह से, वहां पर भी एड्स पर, पैनाफ्लेक्सेस पर, साइन बोर्ड्स पर हम देखते हैं कि अंग्रेजी जबान में या फिर इवन अंग्रेजी लेटर्स को यूज करते हुए रोमन लैंग्वेज में जुमले लिखे जाते हैं. तो मुझे ये लगता है कि इवन जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं या दानिश्वर हैं, फिलोसफर्स हैं, जिनका असर पूरी दुनिया पर है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में हो, सोशल साइंसेस के दूसरी फील्ड्स हो, हमें नज़र आता है कि बहुत बड़े लोग अब भी वो हैं, या वो लोग जो लाइमलाइट में हैं, उनका ताल्लुक उन ममालिक से है जहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है.
3: थैंक यू सर राशिद फॉर शेयरिंग योर ओपिनियन. But now I will like to ask Sir Hamza to share his opinion, and for him I have a question, which is, which language is more difficult for foreigners to learn, and does that affect the global spread? And we have heard a myth that Chinese language is very difficult to learn. Do you believe in this?
5: again, I would second Sir Rashid's opinion that as he mentioned that English language has worked a lot on the widespread of English language, because it is the language of dictionary, it is the language of like syntax, it is the language of books, and there are a huge number of books around the world being translated from other languages into English. And one reason for that, if we see China, like hum agar dekhte hain, to China is a Far East country. And it is totally separated from the Western world. One thing. Another thing, when we learn a new language, we start it from the very basic units. And if we see English has only 26 basic units, and according to the data I have, Chinese has 6,000 expressions. So technically, it is difficult to learn Chinese. It's a fact. We cannot ignore or we cannot deny from this fact. तो जैसा कि इंग्लिश ने अपने ऊपर काम किया, उन्होंने उसको आसान किया, और लिंग्विस्टिक की टर्म में हम एक चीज़ बोलते हैं बोरोइंग, किसी दूसरी जुबान के अल्फाज अपने अंदर जम कर लेना या जज़ब कर लेना, जो कि सलाहियत अंग्रेजी में दुनिया में सारी जुबानों से ज़्यादा है, लेकिन चाइनीज़ में ये वाली सलाहियत नहीं है. तो चाइना को इस पे काम करना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा या सूदमंद यही है कि हम फिलहाल अंग्रेज़ी में तो थोड़े से माहिर हैं ही, तो साथ में चाइनीज़ को सीखने की कोशिश करें.
3: बहुत शुक्रिया सर राशिद हुसैन और सर हमजा अमीन का अपने ख्यालात को बताने के लिए, और हमारे लिसनर्स का भी बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. अब वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, थोड़ी देर के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया,

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: News. मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
4: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतालिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता करें। अवामी हक का मुहाफिज, दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
5: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
6: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز UCP کی دنیا FM 92.6.